0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो के पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
12: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
6: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रैडफोर्ड 495555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
12: मैनिंगम सुपर स्टोर
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफीनास तवक्कल
5: रंग रसिया जारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नजीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिलियन जिले सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रेफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रेफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414-26007-8
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग services.uk
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
12: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
9: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
12: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
12: 07548419678
9: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

दूर पड़ती हुई बाखबर गई खुशबू, नजर जो आया मदीना उतर गई खुशबू। ख्याल था कि न जाने कहां से आए हुजूर, राहे हबीबे खुदा में बिखर गई।

बात करूंगा अदब से हुदूद के अंदर के खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर नबी का नाम आते ही अंगूठे चूम लेता हूँ के इश्क़े रसूल शामिल है मेरे वजूद के अंदर।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679
9: UK
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
6: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रेडफोर्ड 9627229622
11: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: وللله الأسماء الحسنى فدعوه بها صدق الله العظيم.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शाम बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिलियन जले सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शाम बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब लिए एतमाद नाम मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुक कीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान मैं मूत रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट मैं मूत रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 मैं मूत रिजवी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर नवे डेमो
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider. Helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शाम बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां मारिया बी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया जारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नजीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिलियन जिले सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शाम बुटीक ब्रेफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रेफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 अरुली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.
1: You're listening to
0: 0780
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड
9: 01274201679 UK
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
11: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
6: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 495555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
11: मैनिंगम सुपर स्टोर
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो आवर वॉइस Your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शाम बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर नवे डेमो
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटर पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95BR 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
6: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक ऑन ब्रैडफोर्ड 9627229627
12: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैकफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
9: 01274201679 UK
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
12: Labbaik Allahumma labbaik.
13: Hajj aur Umre ke package ke liye Selani Travels and Tours Private Limited ko hamesha yaad rakhiye. आपके बाबरकत सफर के लिए तमाम तर सहूलतों के साथ मुनासिब पैकेजेस मौजूद हैं अपनी दीगर सफरी सहूलियात के लिए याद रखिए सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड हमारा पता B5 सैंड हेवन अपार्टमेंट्स नज़्द 3 तलवार बिलमुकाबिल बॉम्बे लाइट फैसल बैंक ब्रांच इंतहाई मुनासिब कीमत पर आरामदेह सफर के लिए राब्ता कीजिए फोन 565-44-15-16 और 17। मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए वीजे और कयाम और ताम की सहूलत भी मौजूद है। सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका एतमाद हमारे

0: You're listening to
1: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: करम तेरा के बेजौहर नहीं मैं, गुलाम तोर अल संजर नहीं मैं, जहां बीनी मेरी फितरत है लेकिन किसी जमशेद का सागर नहीं मैं।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिलियंजले सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान मैं मूत रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट मैं मूत रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 मैं मूत रिजवीज
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 1413 AM, DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन थाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
12: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
6: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 495555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
12: मैनिंगम सुपर स्टोर
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो आवर वॉइस Your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio. The world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शाम बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिलियन जिले सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शाम बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए Asian Radio.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लैंड ब्रैडफोर्ड
9: 01274201679 UK
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
6: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइट रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रैडफोर्ड 9627229622
11: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइक ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैकवुड से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK दुल्हन वो जो पिया मन भाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: हाँ सामी ने खान पैगाम क्या था कि जिंदगी मिलके बिताएंगे, बिल्कुल सही कहा। अगर सोचा जाए तो जिंदगी जब इंसान मिलजुल के बिताता है ना एक दूसरे के साथ, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। ये हकीकत है। आपके जो अजीज हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके घर वाले हैं, उन सबके साथ मिलके जब आप जिंदगी बिताते हैं ना, तो उस जिंदगी का मजा ही और होता है। अकेले अकेले क्या जिंदगी होती है, जरा सोचिए आप, हकीकत है ये। अच्छा, अब आपको खूबसूरत सी एक गजल सुनाते हैं, नरजिस अफरोज जैदी का कलाम है ये, और उसके बाद बात करेंगे जो अभी हमने आज का जो टॉपिक कह लीजिए, मौजू कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए उसको। तो उससे पहले नरजिस अफरोज जैदी क्या लिखती हैं। डर है आंसू कोई निकल ना पड़े, डर है आंसू कोई निकल ना पड़े, तेरी दुनियाओं में खलल ना पड़े। कुछ तो हमवार ये जमी भी नहीं, कुछ ये गम आसमां फिसल ना पड़े। कुछ तो हमवार ये जमी भी नहीं, कुछ ये गम आसमां फिसल ना पड़े। जब्त अच्छा है लेकिन इतना जब्त, जब्त अच्छा है लेकिन इतना जब्त, दिल का पत्थर कहीं पिघल ना पड़े। रख दिया है बुझा के दीप परे, रख दिया है बुझा के दीप परे, सोचती हूं कि रात जल ना पड़े। क्या कहने हैं, क्या खूबसूरत शेर है। इतनी तहजीब से उठा सदमे, इतनी तहजीब से उठा सदमे, तेरे माथे पे एक बल ना पड़े। कुछ भरोसा मेरा ना आंसू का, कुछ भरोसा मेरा ना आंसू का, गिरते गिरते कहीं संभल ना पड़े। तुझसे मिलकर पलट तो आऊंगी, तुझसे मिलकर पलट तो आऊंगी, जिंदगी तेरे साथ चल ना पड़े। हम तो हद से खामोश हो जाएं, हम तो हद से खामोश हो जाएं, शर्त ये है सदा मचल ना पड़े। ये खूबसूरत सी गजल थी नरजिस अफरोज जैदी साहिबा की लिखी हुई, कि डर है आंसू कोई निकल ना पड़े, तेरी दुनियाओं में खलल ना पड़े। कुछ तो हमवार ये जमी भी नहीं, कुछ ये गम आसमां फिसल ना पड़े। जब्त अच्छा है लेकिन इतना जब्त, दिल का पत्थर कहीं पिघल ना पड़े। रख दिया है बुझा के दीप परे, सोचती हूं कि रात जल ना पड़े। इतनी तहजीब से उठा सदमे, तेरे माथे पे एक बल ना पड़े। कुछ भरोसा मेरा ना आंसू का, गिरते गिरते कहीं संभल ना पड़े। तुझसे मिलकर पलट तो आऊंगी, जिंदगी तेरे साथ चल ना पड़े। हम तो हद से खामोश हो जाएं, शर्त ये है सदा मचल ना पड़े। जी सामीन कराम, सबसे पहले आज प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की नाहिद साहिबा आपने, आपकी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा। यकीन जानिए आपने बताया कि किचन में आप मसरूफ़ हैं, काम काज कर रही हैं, खाना वाना बना रही हैं, और साथ ही साथ आप प्रोग्राम भी सुन रही हैं। नाहिद साहिबा, तहे दिल से हम आपके मशकूर ममनून। और यकीन कीजिए कि ये जो अभी हमने गज़ल पढ़ी, इसका जो एक शेर था कि इतनी तहजीब से उठा सदमे, कि वो क्या था कि माथे पे कोई बल ना पड़े, तो हमें आपकी भी याद आ गई कि ऐसा ही होना चाहिए इंसान को, बहुत बावकार, बहुत जब्त रखने वाला इंसान को हौसला मंद होना चाहिए। जिंदगी में तकालीफ, परेशानियां, मुसीबतें आती रहती हैं, और बल्कि जब वो आती है ना, तो इसका मतलब है, हम पहले भी बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, इसका मतलब है कि आप तरक्की कर रहे हैं, यू आर प्रोग्रेसिंग। प्रोग्रेशन यही होती है, वरना इंसान की जिंदगी जमूत का ना शिकार हो जाती है। अगर तकालीफ ना आए, फिर जिंदगी का मजा क्या। चैलेंजेस होने चाहिए जिंदगी में, तगोदो होनी होनी चाहिए, जिद्दोजहद करनी चाहिए इंसान को, कुछ एम्स, कुछ मकासिद, कुछ गोल्स अपने सेट करने चाहिए, और उनके हसूल के लिए इंसान को अपनी से भरपूर कोशिश भी करनी चाहिए। इसी का नाम जिंदगी है, ठीक है। कभी कभार बीच में ब्रेक लीजिए, कभी कभार आप रिलैक्स कीजिए, आराम से बैठ के पुरसकून होके आप क्या कीजिए, आप प्रोग्राम सुनिए रेडियो पे, किसी का भी प्रोग्राम सुनिए, जब भी आपको फुर्सत मिले। तो जिंदगी चलती रहनी चाहिए, असल बात ये है। अब आते हैं आज के मौजू की तरफ, जो हमने सोचा कि आज आपसे बात की जाए। मौजू ये है सामीने कराम कि हमने पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि स्कूल के आगे से जब गुजर हुआ और जब वहाँ पे जो चीज़ देखी कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, बिल्कुल नौजवान नस्ल जो है, टीनेजर्स जिनकी बात है, तो वो माजरत के साथ कि कोई ख़ास तहजीब उनमें नज़र नहीं आती, ना किसी बड़े का अदब है, ना लिहाज है, ना किसी छोटे पे वो शफकत है जो हमें सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, जिसकी तरबियत की जाती थी। तो बात यह है कि जब आप वालिदैन बनते हैं ना, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पे आप उठा लेते हैं, खुद उठाते हैं। अब जाहिर है आप अपनी चॉइस से सोच समझ के आप फैसला आजकल तो करते हैं कि अच्छा जी हमें वालिदैन बनना है। फिर अल्लाह ताला जब आपको औलाद की नेमत से नवाजते हैं, तो ज़रा जहन में रखिए कि सबसे पहले जब बच्चा दुनिया में आता है, आँख खोलता है, किसको देखता है, किन के साथ वक्त गुजारता है? वालिदैन के साथ, माँ या बाप। बकिया रिश्ते बाद में आते हैं, अगर बहन भाई हैं घर में, और कोई बुजुर्ग है, नाना नानी, दादा दादी, चचा चची, ताई, कोई भी रहते हैं साथ आजकल। हालांकि ये चीज़ तो अब रही नहीं, जिसे जॉइंट फैमिली सिस्टम कहा जाता है, या खानदानी, मुश्तरका खानदानी निज़ाम जिसे कहा जाता है, वो खैर हमारा क्योंकि मौजू आज का है नहीं, ज़ेरे बहस हम उसको नहीं लाएंगे, उसकी तफसील में तो नहीं जाएंगे। लेकिन जो वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अमूमन कोट किया जाता है कि जी जन्नत माँ के कदमों तले है, बजा बिल्कुल सही, लेकिन कभी आपने सोचा कि आया हर माँ के कदमों तले जन्नत होती है? हम ये समझते हैं, हमारा ये ज़ाती ख्याल है, जितना हमारा इल्म है, जितनी सूझबूझ है, समझ है, आप इससे इत्तफाक करें ना करें, ये आपकी अपनी समझ है, सूझबूझ है, कि हर माँ के कदमों तले जन्नत नहीं होती, हर बाप जन्नत का दरवाज़ा भी नहीं होता। उसकी वजह ये है कि अगर आप बहैसियत माँ, बहैसियत बाप, अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा नहीं रहे, आपके ऊपर जो एक बच्चा जो है, जिसने कल को बड़ा होना है, कल को उसकी भी फिर शादी होगी, उसके बाद उसकी भी नस्ल पैदा होगी, फिर अगली और नस्ल होगी, तो यकीन कीजिए कि कई जनरेशन्स पे ये बात चली जाती है, ये सिर्फ एक नस्ल तक बात नहीं रहती। वो सुना होगा आपने कॉल, किसका था, आई थिंक शायद नेपोलियन का, अगर हम गलत नहीं हैं, कि मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दो, मैं तुम्हें एक पढ़ी लिखी कौम दूंगा। तो वो तो उस तरह से बात थी, लेकिन बहरहाल माएँ पढ़ी लिखी, आप गौर कीजिए, अगर अगर हम पीछे जाएं, अपनी वालदा वालदा से पीछे, मतलब जो नानी, जो दादी दादी, उनसे भी चलिए पीछे चले जाएं, तो बहुत कम थे कि पढ़े लिखे लोग थे, बहुत कम तादाद थी। उसके बाद पढ़ना लिखना बहुत आम हो गया, तालीम बहुत आम हो गई, हमारे वालिदैन पढ़े लिखे थे अल्हम्दुलिल्लाह, या जो हमारे नाना नानी दादा दादी थे, वो कुछ ना कुछ इल्म जानते थे, पढ़े लिखे थे, प्राइमरी पास या मिडिल पास जो भी, लेकिन उनकी तरबियत आजकल के आला तालीम याफ्ता लोगों से बहुत अच्छी थी। इससे तो यकीनन आप इत्तफाक करेंगे, वो लोग बहुत सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारते थे, बड़ा उनमें हौसला होता था, ठहराव होता था उनकी ज़िंदगी में, उनको और कोई बहुत से काम नहीं होते थे, अगर औलाद हो गई तो सबसे पहली बात है कि वो औलाद पे तवज्जो देते थे, उसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त, उसको पालना किस तरह से है, कैसे पोसना है, उसकी आदतें क्या बनानी है, क्योंकि शुरू के सामीन कराम जो बचपन के 7-8 साल होते हैं ना, वो किसी भी बच्चे की शख्सियत के अहम तरीन होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी उसमें बहुत हद तक आदात, तरीके कह लीजिए, अतवार, तहजीब, तमद्दुन, सब कुछ जो है ना, वो 8 सालों में उसके अंदर आ जाता है। क्योंकि बच्चा सबसे पहले, कहते हैं ना कि माँ की गोद जो होती है वो सबसे पहला मदरसा, सबसे पहली तरबियत गाह होती है, बच्चे का स्कूल होती है, तो वहाँ से बच्चा सीखता है उठना बैठना कैसे है, खाना पीना कैसे है, किसी से बातचीत करनी है तो किस तरीके से करनी है, क्या तौर तरीके हैं घर के, वक्त की क्या पाबंदी किस तरह करनी है, वादे की पाबंदी है कि नहीं, झूठ बुरी आदत है या नहीं बोलना, सच बोलना है या शाइस्तगी के साथ बात करनी है, अदब आदाब, ये सब कुछ बच्चा घर से सीखता है। तो जब घर में वक्त ही नहीं होगा माओ के पास, वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझती हैं कि हाँ भी खिला पिला दिया, बच्चे को भूख लगी, उसको आला से आला तरीन ब्रांडेड बल्कि डिजाइनर कपड़े वपड़े ले दिए, उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी कर दी, लेकिन तरबियत कहाँ गई, वक्त कहाँ गया, वो जो क्वालिटी टाइम जिसे कहा जाता है, अगर माँ या बाप अपने बच्चे को नहीं देते, तो सामने कराम बहुत सी बात में कमी रह जाती है बच्चों में, बच्चों में एहसास कमतरी जिसे कहते हैं वो पैदा हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस डिवेलप नहीं हो पाता अगर माँ और बाप की भरपूर तवज्जो एक बच्चे को नहीं मिलती। बिल्कुल हम समझते हैं, बिल्कुल बजा कि जी कमाना भी है माँ बाप ने, उन्होंने नौकरी भी करनी है, उन्होंने जॉब पे जाना है, कारोबार है वो संभाला हुआ है, उसको वक्त देना है। किसके लिए आप नौकरी करते हैं? किसके लिए आप कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं? अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्ल के लिए? तो जब आप नस्ल को वक्त ही नहीं दे पा रहे, जब आप उसकी वो तरबियत ही नहीं कर रहे, तो सामीने कराम दौलत कुछ नहीं, दौलत काम नहीं आती है, ये तरबियत काम आती है। ठीक है, तालीम तो स्कूल ने देनी है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आप नहीं हैं, स्कूल आप भेज देते हैं, आप मदरसे में भेजते हैं, आप समझते हैं कि हमने अपने वालिदैन होने का हक अदा कर दिया। ये गलत सोच है, माजरत के साथ, बहुत आप गलत सोचते हैं। या नर्सरी में आप भेज देते हैं 2.5 साल के, 3 साल के बच्चे को, और उससे भी बढ़ के जी प्राइवेट नर्सरी में हमारा बच्चा जा रहा है, बहुत कुछ सीखता है। हम मानते हैं हमारी खुद सारी ज़िंदगी में के 25-28 साल हमने इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व किए, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पाकिस्तान में भी। और पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी, सिर्फ ये नहीं कि एक आध स्कूल में, बहुत से स्कूल्स में तजुर्बा हुआ, कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी, बहुत देखा कि क्या बच्चों में वो चीज़ आती है। देखिए, जो कुछ भी आप बन पाते हैं ना ज़िंदगी में, उसमें आपके वालिदैन का और आपके असातिज़ा का बहुत गहरा हाथ होता है। वो आपकी शख्सियत को पॉलिश करते हैं, आपके अंदर जो सलाहियत काबिलियत जो अल्लाह ने दी हो, और हर शख्स को दी, हर शख्स जो है कोई ना कोई ऐसी सलाहियत और काबिलियत लेके पैदा होता है जो उसको इल्म में नहीं होती शुरू में, लेकिन अगर वालिदैन का साथ हो, अगर वालिदैन क्वालिटी टाइम देते हैं, समझते हैं बच्चे को, उसको जानते हैं, उसको परखते हैं, उसकी अच्छी तरबियत करते हैं, और फिर उसको टीचर्स भी इत्तफाक से अगर अच्छे मिल जाते हैं, आजकल तो वैसे बहुत कम हो गया, लेकिन है तो सही ना, अच्छे लोग दुनिया में हमारा मानना यही है कि अभी भी मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, दुनिया इसीलिए चल रही है। तो फिर वो बच्चा निखर के सामने आता है, तब वो एक बड़ी शख्सियत बनता है, या कम अज कम चले बहुत बड़ी शख्सियत हर कोई नहीं बन पाता, लेकिन एक अच्छी शख्सियत, एक महजब, एक तहजीब याफ्ता जिसे कहते हैं ना, शख्स जो दूसरों के फायदे की बात करता है, जो अपने फायदे को समझता है, अपने नुकसान को समझता है, आगे बढ़ने की उसके अंदर एक अर्ज होती है, वो उसको पूरा करने की कोशिश करता है। जो पहले हमने बात कही कि आपके एम्स, आपके गोल्स होने चाहिए, उनको वो सेट करता है। बाशऊर एक शख्स जो है, एक मुफीद शख्स कह लीजिए, एक अच्छा इंसान आम अल्फाज में कह लीजिए माशरे का, कि वो फिर माँ बाप बनाते हैं या असातिज़ा बनाते हैं। तो वालिदैन बनना सामीने कराम बिल्कुल आसान काम नहीं है। अगर आप बन चुके हैं, बनने जा रहे हैं, तो फिर आपको बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। पैसा सब कुछ नहीं होता, चीज़ें सब कुछ नहीं होती, बल्कि गलत करते हैं आजकल के, हमारा ये ख्याल है, वैसे ज़ाती ख्याल है, इससे आप मुत्तफिक हो या ना हो, कि सब कुछ लेके दे देते हैं, हर चीज़, कौन सा ऐसा खिलौना है, कौन सी ऐसी गैजेट या ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने बच्चों को आजकल नहीं लेके देते, गलत करते हैं। कोई इंसेंटिव होना चाहिए उसके पीछे, कभी कभार लेके दे दीजिए, लेकिन कभी इनकार भी कीजिए कि हर चीज़ जो है वो एक बार कहने से मयसर नहीं होती है। ये इंसान को सोचना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। और वही बात है कि जन्नत हर माँ के कदमों तले फिर नहीं होगी। जो माँ अपने बच्चे को छोड़ देती है, सारा वक्त दूसरों के हवाले कर देती है, क्या जन्नत होगी उसके कदमों के तले? या बाप अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, तो कहां से वो जन्नत का दरवाजा आ गया? इस बारे में सोचिएगा। फिलहाल हमें लेनी है एक ब्रेक।
1: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Maro jambire te jullo mare.
4: फुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी।
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
4: सस्ते फ्लाइट टिकट, वीजा सर्विसेज,
6: उम्रा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज,
4: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम,
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स, 391 ग्रेट होटल रोड, ब्रैडफोर्ड।
6: जब चाहे कॉल मिलाए
4: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स।
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
8: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
8: safewayrider.co.uk।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर,
10: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मैनीगो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
6: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनीगम सुपर स्टोर, मैनीगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनीगम सुपर स्टोर,
10: मैनीगम सुपर स्टोर।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

मधुस्वामी ने कराम, आपने खूबसूरत सा गीत सुना, और नाहिद साहिबा आपके नाम हमने इस खूबसूरत से गीत को किया। आप फिलहाल किचन में मसरूफ हैं, कामकाज कर रही हैं, और साथ ही साथ ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो की नशियात से लुत्फानंदोज़ हो रही हैं, जो आपके लिए पेश की जा रही हैं 1413 AM पे, और ऑनलाइन बहुत से लोग सुनते हैं, और साथ ही साथ अपने मोबाइल फ़ोन पर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्मार्ट ऐप है उसके ज़रिए आप फ़ोन ऐप के ज़रिए सुन पाते हैं हमें। समीन कराम, अभी बात हो रही थी तालीम और तरबियत की, बच्चों की तालीम की, वालिदैन की जिम्मेदारी की। तो कुछ लोग होते हैं कि जो अपना बड़ा नाम कर जाते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि उनकी ज़िंदगी जो है ना वो सरासर अपने माशरे के लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, इंसानियत कह लीजिए, उसकी खिदमत के लिए अपने आप को वो वक्फ कर देते हैं। डॉक्टर रुथ हैं, आपने नाम यकीनन सुना होगा, जर्मनी की ये खातून थी। जर्मनी से ये पाकिस्तान गई, डॉक्टर रुथ फाओ इनका नाम था, और ग़ुलाम हसन हसनी ने एक खूबसूरत सा कलाम डॉक्टर रुथ के नाम लिखा। क्योंकि क्यों यह बड़ा नाम था, जर्मनी की थी पैदाइश इनकी, वहीं पली बढ़ी, लेकिन बड़ी यंग एज में ये अपना मुल्क, अपना वतन, अपना शहर, अपने लोग छोड़ के पाकिस्तान आई। वहाँ पे जगह जगह उन्होंने जो लेप्रोसी सेंटर थे वहाँ पे उन्होंने कायम किए कि जहाँ पे जो कोढ़ के मरीज़ होते थे उनका इलाज किया जाता था। और समीन का नाम, आप जानते हैं अमूमन हम लोग इतने बहसीत इंसान बाज़ोकात ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि जो शर्म आती है सोचते हुए भी, समझ नहीं आती कि मरीजों को उस वक्त छोड़ दिया जाता था, इस तरह उनको टच तक नहीं किया जाता था, उनके अपने उनको छोड़ के चले जाते थे, अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपने अजीज़ो अकारिब, मियाँ बीवी को, बीवी मियाँ को, क्यों, महज एक बीमारी की वजह से। लेकिन यही डॉक्टर रुथ फाओ थी कि जो ये क्रिश्चियन औरत जो थी ये वहाँ पे गई, वहाँ पे उन्होंने बहुत से सेंटर्स कायम किए, फिर उनको जाहिर है पैसों की ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा वापस जर्मनी गई, और आप सोच सकते हैं कि वो खातून उन लोगों के इलाज के लिए जिन्हें कोई देखना पसंद नहीं करता था, हाथ लगाना पसंद नहीं करता था, हत्ता कि उनके अपने, उनके बहुत प्यारे जो थे वो उनको छोड़ चुके थे, तो उस खातून ने, डॉक्टर रुथ फाओ ने जर्मनी में जाके सामीने कराम भीख मांगी सड़कों पे खड़े होके, किन के लिए, उन मरीजों के लिए जो उनके कुछ नहीं लगते थे, हत्ता कि मजहब भी उनका नहीं था, मजहब भी उनका मुख्तलिफ था। तो ज़रा सोचिए आप कि क्या उस खातून ने क्या कुछ किया। फिर वो फंड्स इकट्ठे करके वापस गईं पाकिस्तान, वहाँ पे जाके फिर उन्होंने उन सेंटर्स में काम किया और सारी ज़िंदगी वहीं पे लगा दी, वहीं की होके रह गईं, और उसके बाद वहीं पे उनकी जान जो है उन्होंने अपनी दे दी। तो ये डॉक्टर रुथ फाओ, बहुत बड़ा नाम इंसानी तारीख में, इंसानी शख्सियत में। और ग़ुलाम हसन क्या लिखते हैं उनके हवाले से कि दरीचाए दिल से देखता हूँ, दरीचाए दिल से देखता हूँ, कभी कभी तुझको सोचता हूँ, तो तेरी अजमत के जितने पहलू हैं मेरी नज़रों में रोशनी बन के जगमगाते हैं, हजारों आँखों में जिंदगी की चमक, तेरा प्यार सफर सफर में, दिलों के उजड़े हुए नगर में, दिलों के उजड़े हुए नगर में मसरतों की महक, तेरा प्यार, ये तेरा किरदार और ये तेरा मकाम, रुतफाओ सलाम रुतफाओ, खलूस मेहरो वफा मोहब्बत तेरा अकीदा, खलूस मेहरो वफा मोहब्बत तेरा अकीदा, ये तेरा बे लॉस व बे दिया पुर खलूस इंसानियत से रिश्ता, अजीम जज्बा, ए दर्द मन दर्द आशना, दिल रुबा मसीहा, मरीज के लब पर क्यों ना हो तेरा नाम, रुतफाओ सलाम तुझको रुतफाओ, दरीचाए दिल से देखता हूँ, कभी कभी तुझको सोचता हूँ, तो मेरा वजदान मुझसे कहता है तेरे दिल में, तेरी नजर में है माँ की शफकत के रंग सारे, इन्हीं ख्यालों में खोके एक बेटे ने किस अकीदत से आत तुझ पे कलाम लिखा है, रुतफाओ सलाम रुतफाओ तुझको सलाम। ये समीने कराम, बहुत खूबसूरत सा कलाम डॉक्टर रुतफाओ के नाम, जिन्होंने इंसानियत की खिदमत में
अपनी सारी जिंदगी लगा दी, बिता दी, ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए? कि इनकी जो हयात ज़िंदगी है, इनकी जो हयात है, इनकी जो कहानी है ज़िंदगी की, उससे बहुत से सबक मिलता है, हौसला मिलता है इंसान को कि इंसान सिर्फ अपने लिए ना जिए, इंसान दूसरों के लिए भी जिए, और इंसान अगर इरादा कर ले तो बहुत कुछ कर सकता है। अकेली एक डॉक्टर रुतफाओ ने कितने सेंटर्स कायम कर दिए, कितने मरीजों का इलाज किया, फंड्स इकट्ठे किए। तो ये ऐसे लोगों को सामीन करम याद रखना चाहिए। हम जानते हैं और भी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं पाकिस्तान में, अब्दुल सत्तार एधी जो एक थे, उन्होंने भी ऐसे बहुत से सेंटर्स कायम किए, आज तक चल रहे हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया इंसानियत की खिदमत के लिए, चंदे जमा किए, इदारे बनाए, दारुल अमान बहुत से बनाए, जिनमें ना जाने कितनी लड़कियों, कितनी बच्चियों, घर से भागे हुए बच्चों, उनको रखा गया और सब कुछ। तो बहरहाल इंसान अगर चाहे तो सामीन कराम, इंसान जब चांद पे पहुंच गया, चांद छोड़िए अब तो पुरानी बात हो गई, अब तो इंसान मरीख पे पहुंच गया, कौन सा सैयारा या सितारा है कि जिस पे इंसान जो है ना वो नहीं पहुंच सकता, बहुत तरक्की कर गया। लेकिन साथ ही साथ इंसान को अपनी इंसानियत जो है ना उसको भूलना नहीं चाहिए। लीजिए ये खूबसूरत सा आप गीत सुनिए, पेशकश है ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की, और शामिल हो सकते हैं आप प्रोग्राम में 01274300667।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइक ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग services.uk
13: उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट महमूद रिज़वी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिज़वी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio.
14: जी मोहतरमा समीरा साहिबा बहुत शुक्रिया बहुत नवाजिश प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तहे दिल से आपके मशकूर व ममनून आपकी प्यारी सी मीठी से आवाज़ सुनी बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि अभी फ़िलहाल जो है वो आप किसी काम की गरज से निकली हैं साथ अब माशाल्लाह से आपकी साहबजादी हैं तो बहुत शुक्रिया समीरा साहिबा ये आने वाला खूबसूरत सा गीत محمد رفیع کی آواز میں آپ کے لیے ہوگا, اور ہماری جانب سے آپ کی جو بٹیا صاحبہ ہیں ان کے لیے ہوگا. بہت سی دعاؤں, بہت سی نیک تمناؤں کے ساتھ کہ جہاں آپ جا رہی ہیں آپ اپنے خیر و عافیت کے ساتھ جائیے اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس پہنچیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور جو بیٹی ہیں ہماری ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے. تو یہ خوبصورت سا گیت سمیرہ صاحبہ آپ کے لیے اور آپ کی بیٹی کے لیے.

जी हाँ सामिने कराम, इस वक्त आप समाप्त फरमा रहे हैं ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे। यही नशियात जो है पहुंच रही

हैं पूरी दुनिया में bradfordasianradio.co.uk के जरिए, और जो हमारा मोबाइल ऐप है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसके जरिए भी हमारी नशियात से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। आपसे मुखातिब है आपकी मेजबान उस्मा अशफाक। उम्मीद करते हैं कि जो आज का जाविया हमने आपके गोश गुजार किया आपने पसंद किया होगा। तो बात उसमें हम करने जा रहे थे कि ये जो सूफीज्म है, बहुत से लोग इससे मुतासिर होते हैं, बहुत से लोग जो हैं इसको बहुत समझते हैं कि जी ये ज़िंदगी इंसान की जो है उसमें बड़ी कहते हैं ना कि सुकून लाने वाली चीज़ है और लोगों को बड़ा सही रास्ता दिखाता है। अगर गौर किया जाए तो ज़मीन कराम ये जो सूफीज़म है ये दीन के पैरेलल एक चीज़ बना दी गई है। ये बात हम कर रहे हैं, आपका हमारी बात से मुत्तफिक होना ज़रूरी हरगिज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में, आप अपने दीन को अगर मुताला कीजिए, देखिए सुन्नत को देखिए, अहादीस जो हैं अथेंटिक अगर उनका बगौर मुताला कीजिए, तो कहीं पे भी रहबानियत एक किस्म की है ना सूफीज़म के, जी आप चले जाइए, आप चिल्ले काटिए, आप अल्लाह ताला की यूं इबादत कीजिए, वीरानों में रहिए, लोगों से कट के आप जो है ना अपना वक्त गुजारिए तन्हाई में अकेले में, तो ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है, ऐसा कहीं भी हुक्म नहीं है, कहा नहीं गया। बल्कि हमें तो ये हुक्म है कि इंसानों ही में रह के आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने फराइज हैं जो, उनको पूरा कीजिए, हुक्म ये है। हम उल्टी तरफ चल पड़े, हाँ ये जरूर बात है, अल्लाह ने भी कहा कि हाँ थोड़ा सा वक्त इंसान को रोजाना के 4-5 मिनट 8-10 मिनट निकालने चाहिए, कि वो जो अशफाक अहमद साहब ने बात कही ना कि अपनी जात की तिलावत कीजिए, किस लिए? इसलिए कि अपने बारे में हम सोचें कि हम कहाँ पे सही हैं, कहाँ पे गलत हैं, अपना एनालिसिस करने के लिए, अपना कैथारसिस करने के लिए, अपनी जांच पड़ताल करने के लिए, कि हम देख पाएं कि कहाँ कहाँ हमारी गलती है। दरअसल हम सिर्फ दूसरों की जिंदगियों पे इतनी तवज्जो देते हैं कि हम अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी जात के बारे में भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक जहान है, एक दुनिया है, हमारा अपना जहन है, अपनी अंजुमन है। तो उसमें कभी कभी अकेले बैठ के जरूर झांकना चाहिए कि हाँ भाई कितने गलत हैं हम, कितने सही हैं, हमसे कितने गुनाह होते हैं, क्या क्या गलतियां हुई, उनको सुधारने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वह सूफीज्म में इसका हल नहीं बताया गया। देख लीजिए वो जो बाबे थे डेरों पर, अगर मिसाल दी जाती है तो वो भी लोगों को इकट्ठा करते थे, एक दूसरे के साथ मिलाते थे। ये हरगिज़ नहीं है कि उनके डेरे पे कोई बंदा नहीं आता था, या वो अकेले जिंदगी गुजारते थे, या उन्होंने कहा कि जी एक दूसरे से मिलो जुलो, नहीं, बल्कि उन्होंने तो बहुत ही नॉर्मल जिंदगी गुजार के बताया कि देखिए इस तरह से सुकून हासिल होता है, इंसानियत की खिदमत करके सुकून हासिल होता है। तो इंसानियत की खिदमत आप कैसे करेंगे कि जब आप मराकबे करने या चिल्ले काटने आप कहीं दूर चले जाएंगे, और माफ़ुकुल फितरत अगर चीज़ें किसी से होती हैं, ये सब की सब शोबदेबाजी है। हमारा दीन इसलिए नहीं आया था कि आपको शोबदेबाजी दिखाई जाए। दीन का असल मौजज़ा कुरान है, उसको पढ़िए, उसको सीखने की इंसान को कोशिश करनी चाहिए और समझने की, और उसके बाद उस पर सीधी सी बात है कि अमल करने की। बाकी ये जो है सब चीज़ें ये दुरुस्त नहीं है, पहली बात, और ये बिल्कुल पसंदीदा भी हरगिज़ अगर आप दीन के हवाले से देखें तो ये चीज़ें पसंदीदा नहीं हैं। वो जो सूफ़ी हजरात थे इसमें कोई शक नहीं, वो अच्छे लोग थे, वो अल्लाह के वली, हम कहते हैं ना वलीउल्लाह, तो वलीउल्लाह का क्या मतलब होता है? वली का जो लफ्जी मतलब है ना, वो होता है दोस्त, मददगार, हमदर्द। तो वली तो कोई भी हो सकता है। वलीउल्लाह का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जी बहुत पहुंचे हुए हैं और बहुत ताल्लुक, क्योंकि जिस किस इंसान का अल्लाह से कितना गहरा ताल्लुक है, कितना करीबी ताल्लुक है, कितना अच्छा ताल्लुक है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है। कोई शख्स किसी के बारे में हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि जजमेंटल हमें नहीं होना चाहिए। हम फौरन फतवा दायर कर देते हैं, जी फलां जन्नती, फलां दोजखी, फलां ये, फलां वो, हमें क्या हक पहुंचता है? वो शायर ने कहा था ना किसी ने, और बड़ा खूब कहा था कि तुझको पराई क्या पड़ी, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। हमें तो अपने बारे में देखना चाहिए, अपना हिसाब किताब हमने खुद देना है, किसी और ने हमारी जगह वहां जाके हिसाब किताब नहीं देना। कोई वहां जाके हमारे बारे में नहीं कहेगा कि जी ये ऐसे था या वैसे था, या अल्लाह भी नहीं पूछेगा।
अल्लाह ने आपसे अपना आपका हिसाब लेना है। और जो बार बार जिक्र होता है ना कुरान में, आप कह लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का पैगाम ही तो लेके आए। कुरान किस चीज़ का पैगाम देता है? तौहीद का। अल्लाह की ज़ात वहदहू ला शरीक है। तो जब हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, करते हैं कि जिसमें शिर्क आ जाता है, वो बड़ी बारीक सी चीज़ों में भी आता है सामीने कराम। बहुत इससे बच के रहना चाहिए, हत्तुल इम्कान इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, इसके बल्कि करीब भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गुनाहे, पहली बात है गुनाहे कबीरा में आ जाता है, और दूसरी बात तब तक इसकी बख्शिश नहीं है जब तक इंसान तौबा ना कर ले, उससे हट ना जाए। मददगार इंसान का जो दुनिया में है एक निज़ाम अल्लाह ने बना दिया, उसमें बेशक हम एक दूसरे के मददगार हैं, एक दूसरे के वली हैं, एक दूसरे के हम दोस्त हैं, लेकिन जो मावराई चीज़ें हैं, जो अल्लाह ताला के बस में हैं, वो चीज़ें जो है ना, उसको जहन में रखना चाहिए कि वो आप सिर्फ और सिर्फ मांगिए तो अल्लाह से मांगिए। औलाद देने वाली ज़ात अल्लाह की है, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो इंसान को थोड़ा इस मामले में बहुत बहुत मोहतात होना चाहिए। ये बात है। तो बहरहाल चलिए हम चलते हैं अगले गीत की जानिब। और समीरा साहिबा, हमने आपसे कहा था कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत आपके लिए हम पेश करेंगे। जो पहला गीत था वो तो लता मंगेशकर की आवाज़ में था, तो ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जो गीत है खूबसूरत सा, ये हम आपके नाम करते हैं, आपके नाम भी और आपकी जो साहबजादी हैं माशाल्लाह से उनके नाम भी। तो लीजिए समीरा साहिबा, इस खूबसूरत से गीत को सुनिएगा।

जी जमीन कराम बहुत खूबसूरत सा आपने गीत सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। उम्मीद करते हैं कि इस गीत को आपने पसंद किया होगा। जुनैद साहब आप प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, सुनने के लिए। तो ऐसा है कि जो आने वाला गीत है वो हम आपके नाम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप उस गीत को पसंद करेंगे। नहीं साहिबा, प्रोग्राम में आप दोबारा शामिल हुई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपकी नवाजिश, तहे दिल से आपके मशकूर ममनून हैं। ऐसी जो परखलूस शख्सियात होती हैं ना, वो किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सरमाया होती हैं। कोई भी आपका अगर ऐसा मुखलिस दोस्त हो, अजीज़ हो, रिश्तेदार हो कोई, देखिए ना, हमने पहले भी कहा था कि दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरे ही हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं दुनिया में। अल्लाह ताला, वही बात है कि उन सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। लीजिए ये खूबसूरत सा गीत, नाही साहिबा आपके नाम भी करते हैं, सुनिएगा।

0: ये देखो ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
0: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां मारिया बी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रेफर बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रेफर BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

जी हाँ सामीने कराम, हम तो यहाँ इस वक्त अब स्टूडियोज में बैठे हैं, मौजूद हैं, आप जाने कहाँ कहाँ हैं ये तो हमें इल्म नहीं है। रुखसाना साहिबा बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी, आपने कहा कि काफ़ी दफ़ा आपने ट्राई किया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया रुखसाना साहिबा, तहे दिल से आपके मशकूर व ममनून। ये खूबसूरत सी हमारे पास एक नज़्म है, जी हाँ किसकी है, अमजद इस्लाम अमजद की, यकीनन आप इसे नज़्म को पसंद करेंगी, आपके नाम करते हैं, और फिर एक खूबसूरत सा गीत जो है ना वो भी आपके गोश गुजार किया जाएगा और आपके ही नाम किया जाएगा। अमजद इस्लाम अमजद लिखते हैं अली ज़ीशान के लिए एक नज़्म, अली ज़ीशान उनके बेटे का नाम था। कहते हैं कि मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं, मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं, उसे वो ख्वाब कैसे दूं जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है, उसे वो ख्वाब कैसे दूं जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है, मेरी ताज़ीम की खातिर वो इनको ले तो ले शायद, मगर जो जिंदगी उसको मिली है उसके दामन में हमारे अहद की कदरें तो क्या यादें भी कम कम हैं, मेरी ताज़ीम की खातिर वो उनको ले तो ले शायद, मगर जो जिंदगी उसको मिली है उसके दामन में हमारे अहद की कदरें तो क्या यादें भी कम कम हैं, अनोखे फूल हैं उसके निराले उसके मौसम हैं, खुद अपनी मौज की मस्ती में बहना चाहता है वो, खुद अपनी मौज की मस्ती में बहना चाहता है वो, नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता है वो, समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं, समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं, जमीन पर आज तक जितने भी आदमजात आए हैं इसी मुश्किल से गुजरे हैं, इन्हीं रस्तों में उलझे हैं, इसी मंजिल से गुजरे हैं अजल से आज तक, जितने मोहब्बत करने वाले हैं सभी की एक कहानी है, नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है, उसे कैसे बताऊं मैं कि मेरे बाप की बातें मुझे भी एक ऐसे वक्त का अहवाल लगती थी जो एक फूला फसाना था, मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहां रखता कि ये मेरा जमाना था, नए बाजार थे मेरे, करंसी और थी मेरी, वो बस्ती और थी मेरी, मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद, मगर फिर ये खुला मुझ पर कि कुछ नया कुछ भी नहीं शायद, उसे कैसे बताऊं मैं कि मेरे बाप की बातें मुझे भी एक ऐसे वक्त का अहवाल लगती थी जो एक भूला फसाना था, मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहां रखता कि ये मेरा जमाना था, नए बाजार थे मेरे, करंसी और थी मेरी, वो बस्ती और थी मेरी, मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद, अजल से एक मंजर है फकत आंखें बदलती हैं, मेरी नजरों का धोखा था कि ये चीजें बदलती हैं, उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी तक उस तक नहीं पहुंचा, उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी तक उस तक नहीं पहुंचा, मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्से सुनाने हैं, यही दुश्वारियां होंगी, उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में बहुत दुश्वारियां होंगी कि वो भी तो कुछ अपनी जात अपनी बात कहना चाहता होगा, नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता होगा और अपनी जात की मस्ती में बहना चाहता होगा। ये सामीन कराम अमजद इस्लाम अमजद की लिखी हुई खूबसूरत सी एक नज़्म थी, एक नॉस्टैल्जिक नज़्म की बात बिल्कुल हकीकी है, बिल्कुल सही है। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जो हमारा वक्त जो हमारा दौर है वो हमेशा रहे और हमें वही पसंद आता है, वही अच्छा लगता है। हम बाज़ औक़ात भूल जाते हैं कि ये नया दौर है, ये नया वक्त है, ज़माना नहीं बदलता, याद रखिएगा ज़माना खुद खुदा है, अल्लाह ताला ने कहा जमाने को बुरा मत कहो, तो ये वक्त होता है हर इंसान का, उसकी ज़िंदगी होती है, उसके हालात मुख्तलिफ, उसके वाकयात मुख्तलिफ, उसके ज़माने की जो चीज़ें उसके वक्त की होती हैं वो और तरह से होती हैं। और जिस तरह से जैसे पहले बात AI की हुई कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन
बदलती जा रही है, नित नई इजादात हो रही हैं, बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। आज से 50 साल पीछे चले जाइए तो कभी इंसान ने सोचा नहीं था, अगर 70 साल चले जाइए तो चांद पे जाने का तस्वीर नहीं था, उसके बाद इंसान चांद पे भी पहुंच गया, उससे आगे मरीख तक पहुंच गया। ठीक है, मजीद दुनियाएं, मजीद कायनातें जो अल्लाह ताला ने बना रखी हैं, इंसान उनको ईजाद करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वक्त बदलता है सामीन कराम, इंसान जो है वो नए आ जाते हैं, और हर इंसान को अपना जो दौर, अपना जो वक्त है वही अच्छा लगता है। इस हकीकत को समझना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए कि जो यंग जनरेशन है उसके हालात वाकयात हमारे जैसे नहीं हैं। हाँ, कदरें नहीं बदलनी चाहिए, जो बदल जाती हैं ना उनका अफसोस होता है, खसूसन जो अच्छी कदरें हैं, जो अच्छी इकदार हैं, अच्छी रिवायात हैं, जो तहजीब है उसको नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अदब आदाब हमेशा वही रहने चाहिए। बड़ों का अदब लाजमी है, बच्चों से मोहब्बत शफकत ये लाजमी है, ये रहनी चाहिए। चलिए, खूबसूरत सा गीत रुखसाना साहिबा आपके नाम करते हैं, हमारा बहुत पसंदीदा गीत है ये, उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आएगा।

जी हाँ जरका साहिबा, उम्मीद तो करते हैं कि आपको गीत ये पसंद आया होगा। आपने सुना होगा गीत ज़रूर। और अब यह खूबसूरत सी एक नज़्म है शाहीन मुफ्ती की लिखी हुई, वो आपके नाम करते हैं। लिखती हैं, तीरगी शर्त नहीं, हिजर के दश्त में अशजार कहाँ होते हैं। हिजर के दश्त में अशजार कहाँ होते हैं, चार सू रेत उड़ा करती है जुगनू बनकर। एक दरिया कहीं आँखों के तले बहता है। हिजर के दश्त में अशजार कहाँ होते हैं, चार सू रेत उड़ा करती है जुगनू बनकर। एक दरिया कहीं आँखों के तले बहता है। रात और रात के माबैन ये उजड़ा हुआ दिन, जिसके सुनसान दरीचों में उदासी है खड़ी। अपनी बाहों में लपेटे हुए तन्हाई के फूल हंस के कहता है कि अब आरजुए ख्वाब नहीं। रात और रात के माबैन ये उजड़ा हुआ दिन, जिसके सुनसान दरीचों में उदासी है खड़ी। अपनी बाहों में लपेटे हुए तन्हाई के फूल हंस के कहता है कि अब आरजुए ख्वाब नहीं। मेरी सूरत कभी तब्दील न होने देना, ये हकीकत कभी तमसील न होने देना। नींद को नींद में तहलील न होने देना। तीरगी शर्त नहीं तीरा नसीबी के लिए। बहुत खूबसूरत सी ये नज़्म थी सामीन कराम। और जरका साहिबा, आपके हमने गोश गुजार की इस उम्मीद के साथ कि आपने इसको पसंद किया होगा। अब लीजिए ये एक और खूबसूरत सा गीत सामीन कराम आपके नाम हम करते हैं। वक्त भी क्योंकि महदूद रह गया है, ख़त्म होने में चंद ही लम्हात बाकी हैं, यानी चंद मिनट बाकी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप अभी भी हमारे साथ साथ होंगे, यानी ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को सुन रहे होंगे 1413 AM पे ऑनलाइन। तो लीजिए इस खूबसूरत से गीत को सुनिएगा।

का आखिरी गीत भी आपके लिए पेश किया जाएगा, और उम्मीद यही रखते हैं कि अब तक का जो प्रोग्राम था, अब तक का जो इंतखाब था हमारा, खा गीतों की शक्ल में था, शायरी की शक्ल में, या हमने आपको अशफाक अहमद साहब का जाविया सुनाया, या फिर आपसे बात हुई वालिदैन की तरबियत के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से, और क्या था, जी हाँ, आज का तारीखी वाक़या जो था, जो अकवाल ज़री पेश किए गए, आपने यकीनन पसंद किए होंगे। और कल का प्रोग्राम जो है वो ज़रा मुख्तलिफ होगा, और कल के प्रोग्राम में हम बहुत पुराने पुराने गीत जो हैं, यादें ताज़ा करेंगे। इसके अलावा क्या होगा, जी हाँ, जो दस्तक ना दो नावल है उसका अगला बाब, जो 12वां बाब है, वो हम पढ़ के आप तक पहुंचाएंगे, पॉडकास्ट शामिल है उसमें। उसमें और क्या चीज़ें होंगी, वो कल का प्रोग्राम जब आप सुनेंगे इसी वक्त के दौरान, यानी दिन 10 बजे से लेके तकरीबन 1 बजे तक, तो यकीनन फिर आप उससे भी महजूज होंगे। लीजिए फिलहाल ये जो खूबसूरत सा गीत है, ये आप सुनने वालों के नाम, इस उम्मीद के साथ कि आप पसंद करेंगे।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: on Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: नीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: नीरपुर ट्रेवल्स
5: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
11: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर रोजाना ताज़ा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला
6: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 495555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
11: मैनिंगम सुपर स्टोर
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोफिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिले अनसिले सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रेफर बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रेफर BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
9: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
9: AsianWeddingsUK.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ये बेडफोर्डेशन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bedfordationradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह बाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वह बाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, हम उन्हें भी दिल की तमाम तर गहराइयों से आज की गजल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहेंगे। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। हमारे वेल्स में सुनने वाले सामेईन भी हमारी बज़्म में आ सकते हैं इसी नंबर पर 01274306677।

और दोस्तों रही हमारे हाल और अहवाल की हाल, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हम अपने हाल अहवाल की क्या बात करें, हमारे पास तो उसका शुक्र अदा करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। रही मौसम की बात, तो मौसम आज सुबह से खुनकी है, सर्दी तो नहीं है लेकिन कभी कभी ठंडक का एहसास होता है। टेम्परेचर अभी जब मैं आ रहा था आपकी खिदमत में तो तकरीबन 12 सेंटीग्रेड था। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक टेम्परेचर 16-17 सेल्सियस तक जाएगा। आपके यहाँ मौसम कैसा है, आपके दिलों का मौसम कैसा है, आपका वीकेंड कैसा गुजरा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज से हम अपने एक नए सेगमेंट का आगाज कर रहे हैं जिसका नाम है यादों के रंग गीतों के संग। इसमें हम आप सबके लिए कोई एक गीत आपकी पसंद का ऐसा लाएंगे जिसके पीछे कोई वजह तस्मिया होनी चाहिए, कम से कम ये इल्म होना चाहिए कि ये गीत आपको क्यों पसंद है। गीत आपके होंगे, पसंदीदगी की वजह आपकी होगी और पेशकश मेरी होगी। हम आपको यादों की उस नगरी में लिए चलेंगे जो हमेशा हमेशा के लिए आपके जहनों में महफूज है और जिसकी वजह से ये गीत आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास अहमियत इख्तियार कर गया है। आज का पहला गीत डॉक्टर माहरुख साहिबा नवाजिश, उनकी जुर्रत की है उन्होंने कि नया सेगमेंट है तो मैं इसका पहला गीत आपको बताती हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, बेइंतहा शुक्रिया आपका। इससे पहले कि हम अपने उन तमाम मेहमानों का तारुफ कराएं जो हमारी बज़्म में तशरीफ़ ला चुके हैं, आप जानते हैं कि रिवायत ये है कि हम आगाज़ उसके नामे नामी से करते हैं जिसे लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कोई खुदावंद करीम कह कर इल्तिजा करता है, कोई भगवान कह कर प्रार्थना करता है, कोई वाहे गुरु कह कर अरदास करता है और कोई गॉड या लॉर्ड कह कर घुटने टेकता है। उसे किसी भी नाम से, किसी भी वक्त, किसी भी लहजा, किसी भी आन, किसी भी दुख, किसी भी तकलीफ, किसी भी परेशानी, किसी भी मुसीबत में एक बार दिल की गहराइयों से पुकार के देखिए, वो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहता है। दोस्तों सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि हम सब झुकते एक ही के सामने हैं, मांगते एक ही से हैं और बेशक वो हम सब का रब है, वो हम सब का रब्बुल आलमी है।

अब उन मेहमानों का तारुफ करा दें जो हमारी बज़्म में तशरीफ ला चुके हैं। रियासत साहब तशरीफ लाए हडिसवील की हसीन फ़जाओं से, वक़ार मियाँ वेकफील्ड से मौजूद हैं, रियाज साहब ब्रैडफोर्ड की हसीन वादी से, सुमैरा बिटिया ब्रैडफोर्ड 3 से, डॉक्टर माहरुख साहिबा ब्रैडफोर्ड की हसीन वादी से, और भगत सिंह साहब तशरीफ लाए हैं लीड से। सुमैरा बिटिया हमारी आमद के साथ ही कह रही थी कि जुमेरात के प्रोग्राम में मैं अपना गीत अपनी कजन्स के नाम नहीं लगवा पाई, मुझे काम था, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि उनका तोहफा उनकी नज़र कर दिया जाए। क्यों नहीं, सुमैरा बिटिया बावर्ची खाने की रानी और हमारी प्यारी सी बिटिया, तुम कहो और हम तुम्हारा तोहफा तुम्हारी कजन्स तक न पहुँचाएं, ये मुमकिन नहीं है। तो आइए मिडिल्स बड़ा चलते हैं और पेश करते हैं प्यारी प्यारी कजन्स के नाम, आई लव यू ऑल बेटा, तुम्हारी और सुमैरा की मोहब्बत यूं ही कायम दायम रहे, तोहफा हाजिर है।

दोस्तों, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है, जिन्हें हम दिल की तमाम तर गहराइयों से गजल उसने छेड़ी में खुशामदीद कहते हैं। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में। दुनिया की चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk। हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या वेल्स के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी बज्म में शामिल होना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुशामदीद कहेंगे। और अब हम लिए चल रहे हैं आपको लीस, जहां मौजूद हैं हमारे बड़े खूबसूरत लिसनर भगत सिंह साहब, और कहते हैं कि मेरा मोहब्बत भरा सलाम आपके तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में पेश कर दें। और साथ ही साथ ये गीत उन्होंने सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है जो हम उनकी नज़र कर रहे हैं। याद दिलाते चलें कि आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, यादों के रंग गीतों के संग। बहुत खूबसूरत ये सिलसिला रहेगा, इससे न सिर्फ हम आपको पुरानी यादें भी ताज़ा करा देंगे, आपको कोई गीत सेलेक्ट करना है और फिर ये बताना है कि ये वजह तस्मिया जिसे कहते हैं कि ये गीत पसंद करने की वजह क्या है। बस सिंपल ये है, यादों के रंग गीतों के संग, नया हमारा ये सेगमेंट आज से आगाज कर रहे हैं। आज का गीत मुंतखब किया है डॉक्टर माहरुख साहिबा ने, क्योंकि इस गीत के पीछे पसंद होने की कोई वजह मौजूद है। ओके, तो चलते हैं डिश। भगत सिंह, आपकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया, आपका पसंदीदा गीत लेकर हाजिर हूँ, कबूल कीजिए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। और सुनाइए क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नादीदा लिसनर्स और सोते मुजाहिदों की कसीर तादाद हमारे हमराह मौजूद है, हम जिनके लिए हमेशा एक खूबसूरत गीत का तोहफा भी उनकी नज़र किया करते हैं। लेकिन अभी फिल वक्त हम आपको लिए चल रहे हैं हडफील्ड की हसीन फ़ज़ाओं में, जहाँ जनाब रियासत साहब अपने अहल खाना के हमराह प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ आज सर्दी है, आप पहाड़ी इलाके में हैं मियाँ, मौसम सारे अच्छे और ठंडे और गर्म सब, वहाँ ज़रा उनमें शिद्दत होती है। हालांकि यहाँ ब्रैडफोर्ड में मौसम खुशगवार है, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और टेम्परेचर अभी फिलवक्त जो है वो है 14 टेम्परेचर है इस वक्त यहाँ पर, आपके यहाँ ना मालूम कितना है। बहरहाल हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं रियासत साहब कि आप इस कदर बाकायदगी के साथ तशरीफ लाकर हमारे प्रोग्राम की जीनत व तौकीर में इजाफा करते हैं। चलते हैं आपके और आपके अहले खाना के पसंदीदा गीत की जानिब, हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। खुदा करे कि हमारे इन दुआओं का असर हो और आपको अल्लाह ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमद का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया।

0: Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 81 83 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR

0: प्रांचा मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड 3।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
0: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
1: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
0: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
0: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
4: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मूत रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं मूत रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। मैं मूत रिजवी।
5: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

दोस्तों, आज यादों के रंग गीतों के संग की पहली मेहमान कह लीजिए या उन्होंने पसंद फरमाया है एक गीत, और मैंने कहा था कि इसका मकसद ये है कि आपको यादों की दरीचों की सैर भी कराई जाए और आपकी पसंद का गीत भी आपके नाम किया जाए। तो यादों के रंग गीतों के संग में जो गीत आप मुंतखब करेंगे उसके लिए वजह तस्मिया या ये वजह बताना ज़रूरी है कि ये गीत पसंद क्यों है आपको, इस गीत से आपकी क्या यादें वाबस्ता हैं। डॉक्टर माहरुख साहबा ने जो गीत आज पसंद किया है कहती हैं कि ये जिक्र है अर्ली 70s का। मेरा ताल्लुक मीरपुर से है और उस ज़माने में मीरपुर में शॉपिंग की इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं थी, तो हम लोग इस्लामाबाद जाकर शॉपिंग किया करते थे। उससे एक तो आउटिंग हो जाती थी और एक पूरे हफ्ते भर का सामान आ जाया करता था। ऐसे ही एक वीकेंड था, मेरे वालिद जो नामी गिरामी वकील हैं मीरपुर के, उन्होंने कहा कि भाई बच्चों की भी छुट्टी है, ये घर पर मौजूद है, तो क्यों ना शॉपिंग के लिए इस्लामाबाद चला जाए। हम सब बेइंतहा खुश थे, इसलिए कि आज ही हमारी पसंदीदा कैसेट रिकॉर्ड होकर आई थी। उस ज़माने में जो गीत आपको पसंद हुआ करते थे वो लोग उसकी लिस्ट दे दिया करते थे, और बाकायदा प्रोफेशनल लोग थे जो आपके उन गीतों को एक कैसेट में भर देते थे। तो कहते कैसेट हमारी भर के आई थी, हमने सोचा कि सफ़र लंबा होगा मीरपुर से इस्लामाबाद का, तो हम अपनी पसंद के गीत सुनते हुए जाएंगे। हम सब बहुत खुश थे और हम मीरपुर से निकले। आज वो मीरपुर नहीं है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। आज मीरपुर में हर चीज़ आराम के साथ मिल जाती है, नांगी बाज़ार की रौनकें देखने के काबिल हैं, लेकिन उस ज़माने में ये सहूलतें नहीं थीं और हमारी गाड़ियों को भी इस तरह से हम जाते थे कि पर्दे लगे हुए होते थे और पूरी फैमिली अंदर बैठी हुई और फिर जाते थे। खैर, सफ़र का आगाज़ हुआ मीरपुर से। हमने अपनी पसंदीदा जो नई ताज़ा भर के कैसेट आई थी वो लगा दी और इन्जॉय करते हुए हम रवाना हुए इस्लामाबाद की जानिब। इस गीत को मैंने मुंतखब यूँ किया है कि ये हम सब बहन भाइयों का पसंदीदा गीत था। जैसे ही गीत का आगाज़ हुआ उसके चंद लम्हों बाद एक सामने से आती हुई गाड़ी से बचने के लिए मेरे वालिद जो ड्राइव कर रहे थे, हम तो सब छोटे थे, उन्होंने उससे बड़े हादसे से बचने के लिए गाड़ी को मोड़ काटा, और मोड़ काटते ही गाड़ी उनके कंट्रोल से बाहर हो गई और उसने कई कलाबाजियां खाईं। ये रवात के करीब का वाकया है। और फिर खा के वो सीधी, और उस वक्त ये गीत बज रहा था, बहुत से लोग आ गए एकदम, जाहिर है कि गाड़ी कलाबाजी खा के और फिर सीधी खड़ी हुई और बहुत से लोग नीचे उतरे। वहाँ पर ऊपर नीचे रोड हैं, खाइयाँ हैं, तो गाड़ी एक खाई में चली गई थी। और मेरे वालिद का कहना ये था कि मैं बजाए इसके के बचाता और फुल ब्रेक लगाता, मैंने फुल एक्सीलेटर दे दिया। उन्होंने इस बात का इतराफ़ कर लिया और गाड़ी कलाबाजियाँ खा के नीचे जाकर फिर सीधी हो गई। बहुत से लोग, गाड़ियाँ रुकी और सब लोग उतरे और उतर के सबको निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह सब खराशें आई थी और कोई बड़े अल्लाह ने नुकसान से बचा लिया, और सब परेशान थे, लेकिन ये गीत बज रहा था। मेरे वालिद को बहुत गुस्सा आ गया तो उन्होंने चीख के कहा, यार इसको से बंद करो। और फिर इस गीत को, वो तो मौका ही नहीं मिला था ना बंद करने और खोलने का, तो कहती हैं कि वो अब्बू की अब हमारे डांट जो है हमें आज तक याद है कि कह रहे, यार सुनो कोई इस गीत को तो बंद करो, ए क्या लाया है। और इस तरह ये गीत हमारी यादों में हमेशा के लिए महफूज हो गया।
اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم یہ کیا کہ بجز اس کے کہ چند خراشیں میرے بھائی کو آئی تھیں ہمیں آئی تھیں، اور لیکن سب الحمدللہ خیریت سے رہے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کی مدد سے گاڑی کو اوپر لایا گیا اور پھر ہم نے اپنا سفر جاری کیا، مگر اس کے بعد والد صاحب نے کیسٹ لگانے نہیں دی۔ تو دوستو، یہ ڈاکٹر معروف صاحبہ کا تجربہ تھا جو اس گیت سے وابستہ تھا۔ آپ کے بھی ذہن میں کوئی ایسا گیت ہو پسندیدہ جس کے پیچھے کوئی کہانی یا پسند کی وجہ شامل ہو، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ابھی جب میں آیا تو شہناز، ہماری پیاری سی بہنا ہیں بریڈفورڈ 18 سے، انہوں نے ایک گیت اور ایک چھوٹی سی کہانی بتائی جو ہم آپ کی نظر کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اس گیت کی جانب۔ پروگرام کا نام ہے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے یادوں کے رنگ گیتوں کے سنگ۔ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آج بھی جب ہم یہ گیت سنتے ہیں تو ہمیں اس حادثے کی خوفناک یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا تھا کہ باوجود کئی خلابازیاں کھانے کے گاڑی کے، ہم سب محفوظ رہے، بجز خراشوں کے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ آپ واقعی خوش نصیب ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور یہ رہا وہ گیت، جس وقت حادثہ ہوا تو یہ گیت بلند آواز میں بج رہا تھا، لیکن حادثے کے بعد یہ گیت، گھر واپسی بھی ہوئی لیکن یہ کیسٹ لگائی نہیں گئی۔

अभी आप सुन रहे थे यादों के रंग गीतों के संग। आज का गीत मुंतखब किया था डॉक्टर माहरुख साहिबा ने। फिल्म का नाम था तलाश। आवाज का जादू जगा रही थी सुरों की देवी लता मंगेशकर और मौसीकी से इसे संवारा था SD बर्मन ने और गीत के बोल तहरीर किए थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे हमरा मौजूद हैं कराची पाकिस्तान से ये हसीन जोड़ी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, सेहत से रखे, जनाब रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात मोहतरमा अमरीन जहरा। कहते हैं कि हमारा मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में पहुंचा दीजिए और आप सब के लिए उन्होंने एक बहुत खूबसूरत गजल का तोहफा भेजा है जो हम आपकी नज़र करेंगे और फिर वो गीत जो आज उन्होंने सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। हम आपका मोहब्बत भरा सलाम प्यार और ढेरों दुआएं अपने तमाम सामईन और नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। रिजवान मियां, हमने जो नया सेगमेंट शुरू किया है उसका नाम है यादों के रंग गीतों के संग और इसका गीत का इंतखाब आप करेंगे और लेकिन आपको ये वजह बताना होगी कि क्यों पसंद है या क्या इसके पीछे कोई वाकया है, कोई ख़ास बात है, यानी वजह तस्मिया बयान करना पड़ेगी। सो आपके जहन में भी अगर कोई ऐसा गीत है जो आपको दिल के बहुत करीब लगता है और उसके पीछे कोई वजह मौजूद है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसे शामिल प्रोग्राम करेंगे।

तो दोस्तों, मैं देख रहा था कि फोन बज रहा था, किसी ने फोन किया था। मैं नहीं चाहता कि उन्हें मायूसी हो। जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो उस वक्त तो जाहिर है आप जानते हैं कि मैं आपका फोन पिक नहीं कर पाऊंगा। तो जिस वक्त गीत नश्र हो रहा हो उस वक्त जरूर तशरीफ लाइए, हम आपका फोन हर हालत में उठाएंगे। जो हमने जिक्र किया है, क्योंकि हमारी बज में इस वक्त मौजूद है कराची पाकिस्तान से एक हसीन जोड़ी, रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा की सूरत में, और इनका मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआएं आप तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में। इन्होंने आज मीर तकी मीर की एक बहुत मुश्किल गज़ल भेजी है, जो शायद मेरे सुनने वालों को समझ में ना आ सके। बहरहाल आपने मुंतखब की है, सो मैं उनकी नज़र कर रहा हूँ। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।

दोस्तों हमारे यहाँ फ्लू जैब लग रहे हैं, वो आज मैंने लगवाया, उससे ज़रा सा कंधा भी भारी हो जाता है और ये जो सिलसिला कोल्ड का है थोड़ा सा तंग करता है, लेकिन इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपने अभी तक फ्लू जैब नहीं लगवाया है और आपको टैक्स आ चुका है तो पहली फुर्सत में लगवा लीजिए। मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाए या मौसम में और ज़्यादा ठंडक हो जाए। तो अब चलते हैं हम कराची पाकिस्तान से आए हुए उस तोहफे की जानिब, जिसे भेजा है हमारी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी जोड़ी जनाब रिजवान रिजवी और अमरीन ने। कहते हैं कि महरो माँ तो क्या जाने इस बस्ती के दरो दीवार किस किस का, इस कूचे दिल में कौन लहू प्यास जाने है। हम तो गए उन गलियों से जब सूए अदम वो निकले थे, अब तक खाक उड़ाती फिरती इनकी कोई हवा जाने है। इश्क में हमने कौन से दुख दिल पर अपने झेले हैं, इश्क में हमने कौन से दुख अपने दिल पर झेले हैं, इस बस्ती का अदना अदना बच्चा बच्चा जाने है। महरो माँ तो क्या जाने इस बस्ती के दरो दीवार किस किस का, इस कूचे दिल में कौन लहू प्यास जाने है। इस बस्ती का अदना अदना बच्चा बच्चा जाने है, कोई नहीं इस दुनिया में जो गम का हमारे शरीक बने। हाँ तू है या तेरा गम है जो दिल को बहलाए है, मीर जी के इस जाने से वीरान हुई दुनिया सारी, मीर जी के इस जाने से वीरान हुई दुनिया सारी, कौन अब ऐसी बातें कहेगा कौन हमें समझाए है। मीर जी के इस जाने से वीरान हुई दुनिया सारी, कौन अब ऐसी बातें कहेगा कौन हमें समझाए है। मीर तकी मीर का ये कलाम भेजा है जनाब रिजवान रिजवी और अमरीन ने। हमने अपने तमाम अदब के शदाइयों और शेर के मतवालों के नाम कर दिया है। ज़रा सा ये ख्याल रखा कीजिए कि यहाँ पर हमारी तरह बहुत से कम सुखन भी हैं जो इतना मुश्किल कलाम समझ नहीं पाते हैं, तो सहल आसान सादा और दिल में उतर जाने वाले कलाम गो बहुत आला है और इसमें रंग झलक रहा है इंशा जी वाला भी। और मगर आपने जाहिर भेजा है मीर तकी मीर का, तो मुंतखब किया होगा वहाँ से। बहरहाल हम आपकी पसंद का गीत आपकी नाम कर रहे हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। अभी अभी मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब हमारी बज़्म में तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि रिफत अब्बास भाई मेरी जानिब से तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में मेरा मोहब्बत भरा सलाम पेश कर दें, और जो गीत उन्होंने लिखा है उसे मैं अभी जब मैं ये गीत पेश कर रहा हूँगा रिजवान रिजवी और अम्बरीन के लिए तो उसे नोट कर लूँगा। अय्यूब भाई आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, और ये ओल्डम से हमारे खूबसूरत सादा दिलकश शख्सियत के मालिक मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब हैं, खुश आमदीद। और ये रहा वो गीत जिसे अभी मैं ये गीत नहीं बजा पाऊंगा इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि कमर्शियल में बहुत कम वक्त रह गया है और गीत मुकम्मल नहीं हो पाएगा, और ये मेरी रिवायत है कभी मैं अधूरा गीत या अधूरे नगमात या अधूरी गज़लें शामिल नहीं करता, इसलिए कि जो सुनने वाला अपनी पसंद का गीत सुनना चाहता है उसकी समातों पे बार गुजरता है कि इतनी मेहनत से मैंने सात समंदर पार से या जहाँ से भी मैंने फ़ोन किया और अपनी पसंद बताई और चार बोल सुनवा के उन्होंने गीत ख़त्म कर दिया। तो हम ऐसा नहीं करते, हम आपका पूरा गीत आपकी पसंद का आपकी नज़र करेंगे लेकिन कमर्शियल के वक्फे के बाद। मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब
آپ کی آمد ہمیشہ کی طرح ہمارے لیے باعث مسرت ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. شہناز بہن ہماری بریڈ فورڈ سے بزم میں تشریف لائی ہیں اور کل کے سیگمنٹ کے لیے انہوں نے ایک گیت منتخب کیا ہے, ایک چھوٹی سی کہانی بھی بتائی ہے جو ہم آپ کی نظر کریں گے. اور سیگمنٹ کا نام ہے یادوں کے رنگ گیتوں کے سنگ. آپ بھی اگر ہمارے سیگمنٹ کی زینت و توقیر بڑھانا چاہیں تو اپنی پسند کا گیت ہمیں بتائیے گا, لیکن یاد رہے کہ اس کے پیچھے وجہ تسمیہ کا ہونا ضروری ہے. وجہ تسمیہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے, آخر آسان لفظوں میں کہہ لیجیے کہ اس گیت کو پسند کرنے کی کیا وجہ ہے, تو ہم ضرور شامل پروگرام کریں گے. آپ سن رہے ہیں بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی حسین وادی میں. آن لائن اسے سنا جا رہا ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر. الحمدللہ کثیر تعداد میں ہمارے نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہد ہمارے ہمراہ موجود ہیں, ان کے لیے ہم ایک حسین گیت کا تحفہ پیش کریں گے. تو اب چلتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب اور اس کے بعد رضوان اور امبرین آپ کا تحفہ.

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटर पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। इससे पहले कि हम आपको कराची पाकिस्तान लेकर चलें और अपनी बहुत ही खूबसूरत जोड़ी रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा आपका तोहफा आपकी नज़र करें, हमारे एक बहुत ही सादा दिलकश शख्सियत के मालिक मोहम्मद अयूब चौहान साहब ओल्डहम से हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो आपके लिए तोहफा लाए हैं। तो आइए पहले उनसे मिल लेते हैं और फिर हम आप दोनों का तोहफा आपकी नज़र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रिफत बास भाई, आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अयूब आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक ठाक हूँ, जी रहा हूँ बस आपकी दुआ से।
0: हमारी ढेरों दुआएं हमेशा आपके साथ हैं।
1: तो कुछ इशार सुनाने हैं आपको।
0: जरूर जरूर।
1: ये नज़म है एक, ख्वाहिशों का मौसम।
0: ख्वाहिशों का मौसम
1: जी। जाना तुम चले आओ बारिशों के मौसम में।
0: आहा।
1: अब ना इतना तड़पाओ बारिशों के मौसम में।
0: बारिशों के मौसम में, अच्छा वाह।
1: खाली है दिल का मकान हो जाए वक्त मेहरबान।
0: खाली है दिल का मकान हो जाए वक्त मेहरबान।
1: आके इसमें बस जाओ बारिशों के मौसम में।
0: आहा, आके इसमें बस जाओ बारिशों के मौसम में, वाह
1: जी। या तेरी जब भी आए दिल को मेरे तड़पाए।
0: आहा, या तेरी जब भी आए दिल को मेरे तड़पाए।
1: ऐसे तो ना सताओ बारिशों के मौसम में।
0: ऐसे तो ना सताओ बारिशों के मौसम में।
1: बस्ती ये मेरे गांव की दुनिया जैसे वफाओं की।
0: आहा, क्या खूबसूरत ख्याल है।
1: इसको तू ना गिराओ बारिशों के मौसम में।
0: इसको तो ना गिराओ बारिशों के मौसम में, क्या खूबसूरत इंतखाब है।
1: प्यास ही नहीं घटती शाम भी नहीं।
0: आहा,
1: प्यास ही नहीं कटती शाम भी नहीं कटती। थोड़ा सा मुस्कुराओ
0: बारिशों के मौसम में, वाह वाह वाह वाह, ये शेर बहुत उम्दा है, पढ़िए दोबारा।
1: प्यास ही नहीं कटती शाम भी नहीं कटती। थोड़ा सा तो मुस्कुराओ बारिशों के मौसम में।
0: प्यास ही नहीं घटती, आहा।
1: कैसे कैसे पल ये गुजरे टूटे टूटे ख्वाब बिखरे।
0: आहा,
1: कैसे कैसे पल ये गुजरे टूटे टूटे ख्वाब बिखरे। रेत का न घर बनाओ बारिशों के मौसम में।
0: रेत का न घर बनाओ बारिशों के मौसम में।
1: तूने तो डाली कसमें मोहब्बत की रस्में।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: ऐसे तो न रुलाओ बारिशों के
0: मौसम में।
1: दिल का वर्क था सादा तूने गम दिया ज्यादा।
0: आहा, दिल का वर्क था सादा तूने गम दिया ज्यादा।
1: दर्द और न बढ़ाओ बारिशों के
0: मौसम में। वाह वाह वाह वाह,
1: ये थे बहुत कुछ दो शेर हो रहे।
0: नहीं, वो इसमें एक बहुत खूबसूरत शेर है, प्यास ही नहीं घटती वाला
1: जी,
0: वो पढ़िए दोबारा, बहुत खूबसूरत शेर है।
1: इधर है प्यास को तो न गिराओ बारिशों के मौसम में। ठीक है, कुछ और है?
0: जी जी, आता कीजिए।
1: प्यार की नगरी छोड़कर तुमने ख्वाबों से नाता जोड़ दिया।
0: प्यार की नगरी छोड़ के तुमने ख्वाबों से नाता जोड़ दिया।
1: गले लगा के गहरों को अपनों का दामन
0: छोड़ दिया। आहा,
1: कल तक तेरी खातिर मैंने दुनिया को ठुकराया था।
0: कल तक तेरी खातिर मैंने दुनिया को ठुकराया था।
1: आज तुम्हें ही ने गैर समझकर मुझसे ही मुंह
0: मोड़ लिया। वाह वाह वाह वाह,
1: तो बस इतनी सी। ठीक है जी, सबको हमारी
0: बहुत बहुत शुक्रिया अय्यूब, बहुत अच्छा इंतखाब था आपका और आपका गीत हमने नोट कर लिया है, जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे।
1: जी तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि मेरा सहने का टाइम भी होता है।
0: आपसे मैं बता दूं, आपसे मैं बता दूं, एक गीत के बाद आपका तोहफा है, ठीक है।
1: कुछ लोग मुझे नींद के टाइम जगाते भी हैं, लेकिन मैंने सारे लगा दिया।
0: नहीं, एक गीत बजेगा और उसके बाद आपका तोहफा। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, अल्लाह हाफिज। और दोस्तों, ये थे हमारे अय्यूब चौहान साहब। आप बहुत खूबसूरत, सादा और मासूम सा कलाम ढूंढ के लाते हैं और दिन ब दिन इनकी तलाश में इजाफा हो रहा है और खूबसूरत कलाम मुंतखब करते हैं। बहुत खुशी की बात है। अल्लाह आपको नज़रबद से बचाए और सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और अब हम चल रहे हैं कराची पाकिस्तान और रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जोहरा की पसंद उनके नाम कर रहे हैं, कबूल कीजिए। इसके बाद हम ओल्डम ले चलेंगे आपको, इसलिए कि अय्यूब चौहान साहब अभी पढ़ते में भी मेरे नींद के झोंके आ रहे थे, मुझे लग रहा था।

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
5: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
6: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
4: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
5: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
6: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
5: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
9: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
11: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
11: और खुशबू लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
11: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
12: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
13: दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी कुछ टेलीफोन लाइन में एक प्रॉब्लम चल रही है लेकिन वो उसे दूर कर लिया गया है अभी फॉर द टाइम बीइंग हमारे बहुत ही खूबसूरत लिसनर जनाब शकील साहब बहुत ट्राई कर रहे थे और मुझे मिल नहीं पा रहा था पैगाम लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नियत साबित मंजिल आसान अब वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे। अजहर भाई आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, ब्रेडफोर्ड की हसीन वादी से तशरीफ लाए हैं। और इसके बाद शकील भाई से गुफ्तगू के बाद हम आपको लिए चलेंगे खारियां गुजरात पाकिस्तान, जहां मौजूद हैं जनाबे परदेसी मजीद साहब, उनका गीत नजर करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं भाई शकील से। अस्सलाम वालेकुम। वाले बाद, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
14: तो अब आवाज आ रही है,
13: बिल्कुल क्लियर आ रही है शकील भाई।
14: पहले तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
13: वालेकुम अस्सलाम।
14: मैं हमारे खालिस लीमीर साहब, नबीद भाई हैं, रिजवान रिजवीन खियाली हैं, अयूब भाई हैं, सूफी अब्दुल करीम साहब, चौधरी रुखसार साहब हैं, हाशमी हाउस वाला है, मायू परवेज साहब हैं, मजीद भाई, अला शफिया मनकवी साहब, शाह साहब, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
13: वालेकुम अस्सलाम।
14: शुक्रिया। तो एक गजल लाया हूँ, ये सबिया सदफ लिखने वाले हूँ।
13: अता कीजिए, बिस्मिल्लाह, खुश आमदीद।
14: यूं जिंदगी को जेरो जबर कर रहे हैं हम,
13: यूं जिंदगी को जेरो जबर कर रहे हैं हम,
14: हर दिन ही गर्दिशों में बसर
13: कर रहे हैं हम। वाह वाह वाह वाह भाई, वाह वाह वाह वाह, क्या मतलब है, अता कीजिए।
14: यूं जिंदगी को जेरो जबर कर रहे हैं हम, हर दिन ही गर्दिशों में असर कर रहे हैं हम।
13: आहा।
14: मंजिल की है तलाश मगर ये खबर नहीं,
13: मंजिल की है तलाश मगर ये खबर नहीं,
14: कागज की कश्तियों में सफर कर रहे हैं हम।
13: भाई वाह वाह वाह वाह भाई वाह वाह वाह वाह, मंजिल की है तलाश, अता कीजिए। क्या तजवी है,
14: मंजिल की है तलाश मगर ये खबर नहीं,
13: आहा,
14: कागज की कश्तियों में सफर कर रहे हैं हम।
13: वाह वाह वाह वाह।
14: ऐ शब संभल के तेरे अंधेरों की खैर हो,
13: ऐ शब संभल के तेरे अंधेरों की खैर हो,
14: खुद में तलाश नजमो कमर कर रहे हैं हम।
13: क्या बात है, क्या तजवीहात है, खुद में तलाश, नई बात है, खुद में तलाश नजमो कमर कर रहे हैं हम। वाह वाह।
14: कुछ हसरतों के काफिले, कुछ ख्वाहिशों के घर,
13: कुछ हसरतों के काफिले, कुछ ख्वाहिशों के घर,
14: बस ख्वाब ख्वाब ही में बसर
13: कर रहे हैं हम। बहुत खूबसूरत इंतखाब भाई, वाह वाह।
14: खुर्शीद हमको तेरी तमाजत का डर नहीं,
13: खुर्शीद हमको तेरी तमाजत का डर नहीं,
14: एक तुख्मे नातवा को शजर कर रहे हैं हम।
13: क्या तजवी है, तुख्मे नातवा, अता कीजिए शेर।
14: खुर्शीद हमको तेरी तमाजत का डर नहीं,
13: नहीं,
14: एक तुख्मे नातवा को शजर कर रहे हैं हम।
13: क्या तजवी हाथ है भाई, वाह वाह वाह वाह।
14: हमने तलाश इश्क में हारी है जिंदगी,
13: हमने तलाश इश्क में हारी है जिंदगी,
14: अहले जुनों को आज खबर कर रहे हैं हम।
13: आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह।
14: तू रब्बे कायनात है, परवरदिगारे आलम है,
13: तू रब्बे कायनात है, परवरदिगारे आलम है, हम दिया शेर आ गया, वाह वाह।
14: सजदे तुझे ही शामो सहर
13: कर रहे हैं हम। वाह वाह वाह वाह, अता कीजिए, अता कीजिए। तू रब्बे कायनात है,
14: रब्बे कायनात है, परवरदिगार आलम है, सजदे तुझे ही शामो सहर कर रहे हैं हम।
13: वाह वाह वाह वाह,
14: शुक्रिया था आपकी शेयर करते हैं,
13: अता कीजिए।
14: है मकसदे हयात सदफ के मंजिल मिले हमें,
13: है मकसदे हयात सदफ के मंजिल मिले हमें,
14: उसको तलाश शामो सहर
13: कर रहे हैं हम। वाह वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत लिखती हैं भाई ये सदफ,
14: शुक्रिया,
13: बहुत अच्छा इंतखाब।
14: मकसदे हयात सदफ के मंजिल मिले हमें, तलाश शामो सहर
13: कर रहे हैं हम। इससे पहले कि आप अगला तोहफा पेश करें, आपके लिए सलाम पहुंचा है कराची पाकिस्तान से रिजवान रिजवी, उनकी शरीक हयात का, और खालिया गुजरात से परदेसी मजीद साहब का, और आपके कलाम को बे इंतहा सराह रहे हैं।
14: एक गजल लाया, अनवार फिरोज है इनका नाम।
13: जी जी, अता कीजिए, बिस्मिल्लाह।
14: जहाँ खुद गर्जियाँ हो वो नगर अच्छा नहीं लगता,
13: جہاں خود غرضیاں ہوں وہ نگر اچھا نہیں لگتا,
14: کہ جس میں بھائی بھائی لڑتے ہیں وہ
13: گھر اچھا نہیں لگتا. بھائی واہ واہ واہ واہ بھائی واہ واہ واہ واہ تا کیجیے. جہاں خود غرضیاں
14: ہوں وہ نگر اچھا نہیں لگتا,
13: کہ
14: جس میں بھائی بھائی لڑتے ہیں وہ گھر
13: اچھا نہیں لگتا.
14: جو والدین کا بڑھاپے میں سہارا بن نہیں سکتا,
13: جو والدین کا بڑھاپے میں سہارا بن نہیں سکتا,
14: جو سچ پوچھو تو وہ لگتے جگر اچھا
13: اچھا نہیں لگتا. جو سچ پوچھو, سچی بات ہے, واہ واہ واہ واہ.
14: جو والدین کا بڑھاپے میں سہارا بن نہیں سکتا,
13: جو سچ پوچھو
14: تو وہ لگتے جگر
13: اچھا نہیں لگتا.
14: مجھے تو پیار ہے ان سے جو اوروں کے کام آئیں,
13: مجھے تو پیار ہے ان سے جو اوروں کے کام آئیں,
14: فقط دولت کمانے کا ہنر
13: اچھا نہیں لگتا. بہت بڑی بات کہہ دی, بہت اچھے خوبصورت سلجھے ہوئے اشعار.
14: مجھے تو پیار ہے ان سے جو اوروں کے کام آئیں,
13: واہ واہ,
14: دولت کمانے کا
13: ہنر اچھا نہیں لگتا, واہ واہ واہ واہ.
14: جس کو روندنے والے کو رہبر کس طرح, چمن کو روندنے والے کو رہبر کس طرح مانوں, چمن کو
13: روندنے والے
14: رہبر کس طرح مانوں, وہ خود اچھا بنے مگر مجھ کو مگر
13: اچھا نہیں لگتا, واہ واہ واہ واہ.
14: مجھے تو پیار والی اپنی کٹیا اچھی لگتی ہے,
13: آئے ہائے, مجھے تو پیار والی اپنی کٹیا اچھی لگتی ہے.
14: جو ایوان نفرتیں دے اس کا در
13: اچھا نہیں لگتا. بھائی واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے,
14: شکریہ.
13: یہ عطا کیجیے, مجھے تو پیار والی اپنی کٹیا
14: میں کھو جائے,
13: تو
14: ذمہ داری بھول کر رنگینیوں میں کھو جائے, خدا شاہد مجھ کو وہ راہبر اچھا نہیں لگتا.
13: آئے ہائے, کیا سچی بات کہہ دی, رنگینیوں میں کھو جائے, خدا شاہد. عطا کیجیے اسے,
14: جو ذمہ داری بھول کر رنگینیوں میں
13: کھو جائے, خدا شاہد
14: مجھ کو وہ راہبر اچھا نہیں لگتا.
13: بھائی واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
14: تو آخری شعر کہتے ہیں,
13: عطا کیجیے,
14: ہدف ہو سامنے انوار تو چلتے ہی رہتے ہیں,
13: ہدف ہو سامنے انوار تو چلتے ہی رہتے ہیں,
14: شرابوں کا ہم کو سفر اچھا نہیں لگتا.
13: کیا بات ہے, کیا جاندار مقطع ہے, عطا کیجیے. ہدف
14: ہو سامنے انوار تو چلتے ہی رہتے ہیں, شرابوں کا ہم کو سفر اچھا نہیں لگتا.
13: واہ واہ واہ واہ,
14: تو ٹھیک ہے, بڑی مہربانی
13: بھائی آپ کے لیے, بے انتہا سراہا ہے رضوان صاحب نے اور انہوں نے, اور وہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلام ہے, بہترین انتخاب, اعلیٰ ادائیگی.
14: بہت بہت شکریہ رضوان ان کے علیہ کبھی اور مجید بھائی اور بھی جتنے ہیں سب کو میں شکریہ بہت.
13: اور میں نے شکیل بھائی آپ کا گیت نوٹ کر رکھا ہے, انشاءاللہ اسے شامل پروگرام کروں گا.
14: ٹھیک ٹھیک,
13: بہت شکریہ احمد کا. اللہ حافظ, اللہ حافظ.

मैं फिर अब देख लूंगा फोन को कि दूसरे मेहमान आ रहे हैं या नहीं, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं, आपको लेकर चल रहे हैं खाड़ियाँ गुजरात पाकिस्तान, और पेश कर रहे हैं वो तोहफा जिसे सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है सात समंदर पार से परदेसी मजीद साहब ने। आपकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया।

दोस्तों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं बर्नली, जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले आप की खिदमत में अशआर का तोहफा लेकर हाजिर थे जनाब शकील साहब। उनकी पसंद उनकी नज़र करते हैं और इसके बाद ब्रैडफोर्ड की हसीन वादी में मौजूद हमारे खूबसूरत लिसनर अजहर साहब आपका तोहफा लेकर हाजिर रहूँगा। बढ़ते हैं और शकील भाई, आपका तोहफा आपकी नज़र कर रहे हैं, कबूल फरमाइए। आमद का बे इंतहा शुक्रिया।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

आपको ब्रैडफोर्ड एटीन लिए चलते हैं, जहां मौजूद है हमारी प्यारी सी बहना जो हमें ढेरों दुआओं से नवाजती हैं, और आप हैं शहनाज। शहनाज बेटा जीती रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे और बच्चों की बहारें दिखाए। यही दुआ लेने के लिए तुम आती हो ना हमारे प्रोग्राम में। हमेशा हमारी ढेरों दुआएं तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी पसंद तुम्हारे नाम। कबूल करो।

0: Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
12: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
12: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ये था द वे यू लुक, ये था नूर चहाल और तलविंदर. और तलविंदर हमेशा अपना शक्ल को एक स्केलेटन में बना देता, और अभी हेलोवीन भी है तो आजकल बहुत सारे स्केलेटन्स नजर आएंगे शायद दुकानों में, डेकोरेशन में अभी आने वाला है. तो मैंने अभी गाड़ी में देखा था एक स्केलेटन, तो ये भी एक बात है अक्टूबर के बारे में. और पम्पकिंस भी बहुत थे, मैंने अभी पम्पकिन एक लिया था और कोई लोग काफ करते, और मैंने पम्पकिन के रेसिपीज बनाए थे, पम्पकिन केक, पम्पकिन सूप और बहुत सारे दूसरे अच्छे अच्छी चीज़ें. तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग, दिस इज कॉल्ड सांड.

ये था तीती मी प्रगुतो और मुंदिया तू बच गए. एंड इफ यू हैव एनी अदर सॉन्ग रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट द स्टूडियो नंबर इज 01274306677. सो मेक श्योर टू कॉल इन इफ यू वांट एनी ऑफ योर सॉन्ग्स प्लेड. एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू प्ले गंगना बाय डॉक्टर ज़ीस.

0: Yo. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन थाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
6: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रैडफोर्ड 9627229622
11: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: And we're back after the short, sweet commercial break. I hope everyone had a good break. Abhi studio mein time hai 5:30. So I hope abhi traffic time hai. So I hope everyone's getting home on time and. They're going to have a good evening, have a nice dinner. The next song I'm going to play is Ishq Na Chahve. This is one of my favorite songs.
3: Tumhe gana yaad hai?
13: Obviously.
3: Let's dance.

ये था इश्क नचावे फ्रॉम द मूवी खो गए हम कहाँ, और इसमें काफ़ी डिफरेंट एक्टर्स थे. और दिस कॉमेंट्स में किसने लिखा, दिस सॉन्ग इज क्रिमिनली अंडररेटेड. वेल आई एग्री, बहुत अच्छा है. और नेक्स्ट मैं प्ले करूँगी कोई सिमिलर सिमिलर साउंडिंग, ये है पछताओगे बाय अरिजीत सिंह, और नौरा फतेही है डांसर.

ये था ट्यूटर वाई चीमा वाई. आई होप दैट यू एंजॉयड दैट. और अभी मेरे शो के बाकी मिनट्स रिमेनिंग है, तो मैं एक रीमिक्स प्ले करूँगी और ये है लेविटेटिंग और वो लड़की जो.

0: That was Levitating and Wo Ladki Jo. That was a mashup by DJ Rutcher. Thank you for listening to my show. If you've listened, thank you very much. I hope everyone has a lovely evening. And yeah, I'll see you next week. And just before we go, I'll just share one last quote with you. And this is, the only way to do great work is to love what you do, indeed. Goodbye from me, Alafis. Take care.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शाओ बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
9: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
9: AsianWeddingsUK.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
13: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: 1 Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रेडफुट
9: 01274201679 UK
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
11: Bradford Asian Radio on 1413.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफीनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स महमूद रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिजवी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
5: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
4: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
5: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
4: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
5: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
6: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
5: जब चाहे कॉल मिलाएं
4: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटर पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
5: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
5: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
5: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
5: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
11: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताज़ा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
5: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रैडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
11: मैनिंगम सुपर स्टोर
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रेफोर बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रेफोर BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह की हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 Athington Street ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
13: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब रणवीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन खाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रैडफोर्ड 01274201679
9: UK
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
6: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइट रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रैडफोर्ड 9627229622
10: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
11: You're listening to Bradford Asian Radio.
12: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: experiences with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
2: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
3: जहां मारिया बी सना सफिनास तवक्कल
1: रंग रसिया जारा शाहजहां करिश्मा
2: नूरे सोबिया नजीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
3: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
2: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
4: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
5: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
5: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
7: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
5: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
5: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
5: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
11: You're listening to Bradford Asian Radio,
12: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

है माशा अल्लाह माशा अल्लाह, बाकी अदाएं माशा अल्लाह माशा अल्लाह, पलकों की उठती गिरती चिलमन तीर चलाए माशा अल्लाह।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677.
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
13: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: डूरे सोफिया नजीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं।
1: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY।
0: फाइंड अस ऑन टिकटॉक।
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
4: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
3: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
4: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
3: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY।
4: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678।
3: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
7: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: नीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
5: उफ कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियां और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लेन ब्रैडफोर्ड
8: 01274201679 UK
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
10: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
6: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रैडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
10: मैनिंगम सुपर स्टोर
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
11: You're listening to Bradford Asian Radio.
12: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां हमारी अबी सना सफीनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम

0: 304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड 3।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
0: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
1: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
0: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
0: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
4: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब लिए एतमाद नाम। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुक कीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। महमूद रिजवी, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
5: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैकफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल तफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटर पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन थाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
6: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रैडफोर्ड 9627229622
12: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
3: ब्रेडफोर्ड्स नंबर वन एशियन कम्युनिटी रेडियो, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM, DAB+, मोबाइल ऐप and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: जब देखो नया सूट, नया डिजाइन, नया अंदाज, आखिर क्या है राज?
9: इसमें राज की कोई बात नहीं, दरअसल शाओ बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है।
10: जहां हमारी अबी सना सफिनास तवक्कल,
8: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा,
9: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिली अंजलि सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं।
10: शमा बुटीक, ब्रफो बाजार, 36 सेमेट्री रोड, ब्रफो, BD89RY।
9: फाइंड अस ऑन टिकटॉक।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
13: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
0: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
2: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
2: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
1: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, Bradford Asian Radio.
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: जी लिस्टनर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब मोहम्मद अली दुरानी, और आज जो तकरीब थी जिसमें डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान जनाब तारिक इमाम के हवाले जो सीडी गई थी, जो लॉन्च की गई सीडी जिसमें इकबाल का कलाम है, इसका टाइटल अपना मुकाम पैदा कर, इसके हवाले से हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम सलाम।
2: जी सर, इस सीडी के हवाले से और आज जो तकरीब थी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
3: इकबाल डे के रेफरेंस से आज सीडी को जारी किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो कलाम है उसको नौजवानों तक, इकबाल की सोच को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो बहुत अरसे बाद कलाम इकबाल को दोबारा जो है एक नए के साथ जो है पेश किया गया है और एक नए अपोजिशन के साथ पेश किया गया है। मैं समझता हूँ ये एक डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह ये काफी जारी रहेगा।
2: हम सिर से उनका पैगाम लेंगे हजरत इलामा इकबाल का जो में पैदाइश है उस हवाले से। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं समझता हूँ कि जी अहमियत जो है वो इस जाहिर होती है कि शख्सियत का यौम पैदाइश है, जिनके तस्वुर की बुनियाद पर यह मुल्क हमारे वजूद में आया, और ऐसी शख्सियत जो पूरी मुस्लिम उम्मा के नौजवानों के लिए एक आइडियल की हैसियत रखती है, और ऐसी शख्सियत जिनके कलाम ने जो है पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर जो है एक एतमाद और एक अपनी पहचान, एक खुदी और एक एतमाद पैदा किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि दिन अहम है और हमारी की सोच और फिक्र जो है वो इस तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब जो है न सिर्फ इकबाल के पैगाम को समझे बल्कि उससे अमली रहनुमाई भी हासिल करें।
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: दुरूद पढ़ती हुई बाखबर गई खुशबू, दुरूद पढ़ती हुई बाखबर गई खुशबू, नजर जो आया मदीना उतर गई खुशबू, ख्याल था कि न जाने कहां से आए हुजूर, राहे हबीबे खुदा में बिखर गई।

बात करूंगा अदब से हुदूद के अंदर के खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर नबी का नाम आते ही अंगूठे चूम लेता हूँ के इश्के रसूल शामिल है मेरे वजूद के अंदर।

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैकवुड से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168 मीरपुर ट्रेवल्स मीरपुर उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
8: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
8: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रैडफोर्ड 01274201679
8: UK
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274306677.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुरान की आयत खुदा खोल रहा था, कुरान की आयत खुदा खोल रहा था, उम्मत को वो आका के लिए तोल रहा था। कंकर भला देते नहीं आका की गवाही, सरकार के लहजे में खुदा बोल रहा था।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: जब देखो नया सूट नया डिजाइन नया अंदाज आखिर क्या है राज
6: इसमें राज की कोई बात नहीं दरअसल शमा बुटीक का हर सूट ही सबसे अलग होता है
7: जहां मारिया बी सना सफिनास तवक्कल
5: रंग रसिया ज़ारा शाहजहां करिश्मा
6: नूरे सोबिया नज़ीर मनीजे की फुल कलेक्शन के साथ साथ सिलियन जले सूट के अलावा ऑर्डर पर भी सूट तैयार किए जाते हैं
7: शमा बुटीक ब्रफो बाजार 36 सेमेट्री रोड ब्रफो BD89RY
6: फाइंड अस ऑन टिकटॉक
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
12: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला किट

0: वाले ही बनाते हैं।
1: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहाँ से बनवाया है।
0: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
0: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
2: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
3: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.